0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I'll tell you a little secret. एक्चुअली पता है क्या है, रिलेशनशिप्स में ना झगड़ा लड़कियां नहीं करना चाहती हैं. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक वी वर बॉर्न टू डू कलेश. गलती हमेशा आपकी होती है. नाउ टेल मी दिस, हम सबको पता है कि आप कितने बड़े लुक्खे इंसान हो. टेक माई एक्स बॉयफ्रेंड फॉर इंस्टेंस. उसके पास जिंदगी में कोई खास काम नहीं था, मतलब पिताजी की मिले चली जा रही हैं और वो जाकर बस उस मिल की ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, चावल को घिसते हुए देख रहा है. इट्स नॉट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो उसे क्यों 3 घंटे लगते थे मेरे मैसेजेस का जवाब देने में? आई जस्ट नेवर अंडरस्टूड. और 3 घंटे ऐसा नहीं है कि उसने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया है. 3 घंटे में उसने लास्ट इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्ट 1 घंटे पहले देखा है, बट ही हैजंट हैड द टाइम टू रिस्पॉन्ड. क्यों? क्योंकि चावल घिस रहे थे और वो उस मशीन को देख के पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र कर रहा था, दैट ही डिडंट हैव द टाइम टू रिस्पॉन्ड टू माई मैसेजेस. एंड दैट्स एक्चुअली एग्जैक्टली वाई वी ब्रोक अप, क्योंकि जनाब के पास मेरे लिए टाइम नहीं था. यहां पर मैं रोज आकर काम करती हूँ, रोज एक आइडिया सोचती हूँ, उसे आपसे सुनाती हूँ, आपसे बातें करती हूँ. इट्स एन ऑन गोइंग डायनामिक जॉब. उसका क्या काम है? मशीन का लीवर भी ऑन नहीं करता था.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: लाइफ में ना कभी कभी हम कुछ ऐसे काम करते हैं सुपर ग्लोरियस सुपर क्रेजी कि हम हर एक इंसान को बता नहीं सकते उसके बारे में. लेकिन अगर आपने कभी ऐसा काम किया है ना तो नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं तो आपको रोशिफाई करने के मूड में हूँ. टाइम हो गया फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: हाँ, एंड हिट मी अप, यू जस्ट हैव टू सेंड मी योर नंबर ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और वंस यू सेंड मी योर नंबर आई विल कॉल यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो,
1: हाउ आर यू? नर्वस साउंड कर रहे हो आप बहुत.
3: ऐसे ही कुछ हुआ वैसा, इसीलिए.
1: क्या बात कर रहे हो, क्या किया आपने जिंदगी में बताओ तो.
3: सो हुआ ये कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गया.
1: फिर?
3: यस.
1: फिर?
3: या सो अराउंड 3-4 o'clock जब मैंने देखा सब उसको विश कर रहे हैं, तब मुझे याद आया कि उसका बर्थडे था. तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया कि मैं एक पार्टी प्लान कर रहा था इसलिए मैंने विश नहीं करा था. तो ये हुआ था.
1: वो मान गई कि आप उसको सरप्राइज पार्टी दे रहे थे इसलिए आपने विश नहीं किया था.
3: हाँ,
1: क्या बात.
3: मैंने फिर वो प्लान कर ली.
1: तो वो खुश हो गई वो आपकी सरप्राइज पार्टी पे. आप क्या बंदे हो यार, कमाल. कितने टाइम से डेट कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को?
3: It's been 1.5 years.
1: तो बेसिकली पिछले साल आपको याद था या भूल गए थे पिछले साल?
3: नहीं, पिछले साल याद था.
1: और फिर एक साल हो गया, then you were like, छठ परे क्या फर्क पड़ता है. You are so cute, you are sounding so nervous. You are like, रोशी मैंने ये कर दिया, किसी को बताना नहीं. मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? एक गहरी सी सांस लो.
4: You've been roshified.
1: अगली बार ना एक काम करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन आपने जैसे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना नंबर भेजा है ना, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ भेज देना. मैं अगले साल आपको 2 दिन पहले रिमाइंड कर दूंगी. हाउ डज दैट साउंड?
3: ओह, दैट विल बी ग्रेट.
1: है ना? ऑल द बेस्ट यू माय डार्लिंग. यू साउंड सो नर्वस. एक ग्लास पानी पी लो आप एक तो साइड में. और अगर आप भी जिंदगी में बहुत ही नर्वस हो, बिकॉज यू आर अ वेरी शाई पर्सन बाय नेचर, इट डज नॉट मैटर. मैं आपकी मतलब गले पड़ी हुई BFF हूँ. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड हैव आई एवर टोल्ड यू हाउ क्यूट आई थिंक यू आर? एनीवे, सो डू व्हाट यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba! Roshi Baba ki!
2: Calm down, my bhagjano. I have some great piece of relationship advice for you today. And that is that if your ex says that they want you back, वापस जाने से पहले बस चार चीजें कंसिडर कर लेना. नंबर वन, वॉज दैट पर्सन ड्रंक व्हेन दे वर आस्किंग यू टू कम बैक. नंबर टू, ट्राई एंड फिगर आउट कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या आपके साथ स्पेंड किए वक्त को स्लैश द ग्रेट एक्शन को. नंबर तीन, फिगर आउट अगर आप उन्हें मिस कर रहे हो. नंबर फोर, ट्राई एंड फिगर आउट कि आपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस, और क्या व्हेन यू गो बैक वो चीज प्रॉमिस फिर से नहीं होगी. इफ ऑल दोज फोर थिंग्स आर अंडर योर कंसिडरेशन, देन आई हैव अ फीलिंग कि आप एक मिस्टेक फिर से तो नहीं करने वाले हो. और अगर ऐसा कर चुके हो एंड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या आप चाहते हो कि आप और आपका क्रश गेट इन द मूड फॉर लव और सडनली आपका क्रश स्टेटस से आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाए? मे आई सजेस्ट कि आप एक ड्राइव पर जाओ और अपनी प्लेलिस्ट को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करो. सो दिस वीकेंड अ रियली क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई, हमने डिसाइड किया कि बारिश हो रही है, ड्राइव पर चलते. अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फॉर सम रीजन हम रेडियो सुन रहे थे बिकॉज ऑब्वियस आई वर्क विद रेडियो, ये वो, ठीक है. एंड देन रंगीला का वो गाना याद है, हाय रामा ये क्या हुआ, एंड That song just played out, okay? और हम दोनों सुन रहे हैं गाना, सुन रहे हैं गाना. First para तक पहुंचते पहुंचते suddenly I'm like, oh my god, he's a guy. And I think उसकी आंखों में भी ये लुक था कि oh my god, रोशी तो एक लड़की है. And suddenly we had this crazy realization कि we are not just friends, we are also a man and a woman in a car जहां पर बाहर बारिश हो रही है. And I don't need to tell you anything else because आपकी imagination is better than mine. What I'm trying to say here, you naughty person, is अगर आपकी लॉन्ग ड्राइव पर प्लेलिस्ट सही है, देन आपके रोमांस को होने से कोई नहीं रोक सकता. एंड इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आपने ऐसी ड्राइव्स और प्लेलिस्ट 1001 बार कर चुके हो, देन वॉन्ट यू शेयर योर स्टोरी विद मी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, बी द नॉटी पर्सन दैट यू आर, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: प्यार के बेहतरीन टाइप्स होते हैं. लेट्स लाइक गेट अ लिटिल बिट मोर ऑब्जेक्टिव अबाउट लव एंड टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ लव जो रोमांटिक नहीं होता बट आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है. इट्स बेसिकली आपके खाने के थाली में नमक का काम करता है. नो नमक नो एंजॉयमेंट इन द थाली. वैसे ही वो बेस्ट फ्रेंड होता है जब आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपका दिमाग खा चुके होते हैं टू दैट पॉइंट जहाँ आपको लगता है कि बिल्कुल ही जैसे मकड़ी बोलने वाली थी मैं बिल्कुल ही जैसे दीमक खा जाती है ना एक अच्छे से सुंदर से वुडन कैबिनेट को वैसे ही आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपके दिमाग का दही कर दिया है. देन यू कॉल योर बेस्ट फ्रेंड दैट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसे कहने से पहले ही अगर आपने कहा यार मेरा बंदा ना एंड दैट पर्सन जैसे ऑफकोर्स पहले से ही पता था डड्डू था डड्डू है डड्डू रहेगा वो तो तू उस पर एहसान कर रही है नहीं तो उसे तो कोई भाव भी नहीं देता. अपने आप को देखा है उसे देखा है एंड दैट इज द पर्सन you fall in love with and stay in love with for the rest of your life. Isse kehte hai wo wala pyar jo aap apne bestie ke saath karte ho. Duniya mein romantic love will come and go. Lekin bestie wala pyar ek baar ho jaye na zindagi ke end tak chalta hai. Aur agar aapke saath ye bestie wala pyar ho chuka hai, you lucky person. Aren't you going to tell me all about it? Aap mujhe apne bestie ke bare mein batao aur main aapko apni bestie ke bare mein bataungi. Aur wo sab karne ke liye is jaddo-jahd ko pakadne ke liye you can find me on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai Rochie. So go ahead my darling, do what you need to do. Lekin kahin mat jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक सेल्फ लव कॉर्नर, आपको सिर्फ एक सेल्फ लव कॉर्नर की जरूरत है अपने घर में, अपने कमरे में, एंड दैट विल मेक श्योर कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत ही मीडियोकर हो रहा होगा ना, यू विल ऑलवेज हैव अ प्लेस टू गो जहां आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो. सो मेरे कमरे में एक साइड में कॉर्नर है जहां मैं मेडिटेट करती हूं, तो वहां पर मेरा एक छोटा सा कार्पेट है और उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी सीट है जहां मैं बैठ के मेडिटेट करती हूं. मेरी फेवरेट कैंडल्स, मेरे क्रिस्टल्स, मेरे कृष्णा की मूर्ति, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इन दैट वन कॉर्नर. अब क्योंकि उस कॉर्नर में मेरी सबसे चहेती चीजें हैं, जैसे ही मैं उस कॉर्नर के पास पहुंचती हूँ, आई ऑटोमेटिकली एंड अप फीलिंग बेटर. तो अब ब्रेकअप हो गया, सबसे पहले मैं उस कॉर्नर में जाके बैठती हूँ. कोई अच्छी खबर है, सबसे पहले मैं उस कॉर्नर में जाके एक्सप्रेस करती हूँ. कोई ऐसी फोन कॉल है जो पक्का मुझे एंग्जाइटी देगी, मैं उस कॉर्नर में बैठकर करती हूँ. एंड ऑनेस्टली ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि रिलेशनशिप्स हैव कम एंड गॉन, जॉब्स हैव कम एंड गॉन, लेकिन ये सेल्फ लव कॉर्नर सिर्फ मेरे लिए बेटर एंड बेटर हुआ है. तो अगर आपकी जिंदगी में आपके पास थोड़ा सा टाइम है, कलेक्ट ऑल योर फेवरेट थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी और अपने कमरे में एक सेल्फ लव कॉर्नर क्रिएट करके देखो. आई एम टेलिंग यू 100% रोशी गारंटी, you're going to love it. And once you do, मुझे thank you बोलने के लिए, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: लाइफ में ना कभी कभी हम कुछ ऐसे काम करते हैं सुपर ग्लोरियस सुपर क्रेजी कि हम हर एक इंसान को बता नहीं सकते उसके बारे में. लेकिन अगर आपने कभी ऐसा काम किया है ना तो नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं तो आपको रोशिफाई करने के मूड में हूँ. टाइम हो गया फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: हाँ, एंड हिट मी अप. यू जस्ट हैव टू सेंड मी योर नंबर ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और वंस यू सेंड मी योर नंबर आई विल कॉल यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हेलो,
1: हाउ आर यू? नर्वस साउंड कर रहे हो आप बहुत.
3: ऐसे ही कुछ हुआ वैसा, इसीलिए.
1: क्या बात कर रहे हो, क्या किया आपने जिंदगी में बताओ तो.
3: सो हुआ ये कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गया.
1: फिर?
3: यस.
1: फिर?
3: या सो अराउंड 3-4 o'clock जब मैंने देखा सब उसको विश कर रहे हैं, तब मुझे याद आया कि उसका बर्थडे था. तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया कि मैं एक पार्टी प्लान कर रहा था इसलिए मैंने विश नहीं करा था. तो ये हुआ था.
1: वो मान गई कि आप उसको सरप्राइज पार्टी दे रहे थे इसलिए आपने विश नहीं किया था.
3: हाँ,
1: क्या बात.
3: मैंने फिर वो प्लान कर ली.
1: हाँ, तो वो खुश हो गई वो आपकी सरप्राइज पार्टी पे. आप क्या बंदे हो यार, कमाल. कितने टाइम से डेट कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को?
3: It's been 1.5 years.
1: तो बेसिकली पिछले साल आपको याद था या भूल गए थे पिछले साल?
3: नहीं, पिछले साल याद था.
1: और फिर एक साल हो गया, देन यू वर लाइक छठ परे, क्या फर्क पड़ता है. You are so cute, you are sounding so nervous. You are like, रोशी मैंने ये कर दिया, किसी को बताना नहीं. मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? एक गहरी सी सांस लो.
4: You've been roshified.
1: अगली बार ना एक काम करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन आपने जैसे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना नंबर भेजा है ना, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ भेज देना. मैं अगले साल आपको 2 दिन पहले रिमाइंड कर दूंगी. हाउ डज दैट साउंड?

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
4: शशि वो मैनहट्टन है।
3: मैन हैटन
5: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
4: टैन मतलब वो धूप की छाप।

इतनी सारी जिंदगी और इतनी सारी मोहब्बतें जीने के बाद ना, आई हैव कम टू दिस वन कंक्लूजन, वक्त किसी के पास नहीं होता है, एवरीवन इज बिजी। ठीक है, हम जिंदगी में काम भी कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और इंस्टा की रील्स भी स्क्रोल करना है, तो वक्त हमारा सबका गुजर जाता है। लेकिन अगर कोई आपके लिए वक्त निकाल रहा है ना, देन दैट ट्रूली मीन्स दैट दे लव यू। क्योंकि लाइक आई सेड, किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, सब बिजी है। लेकिन अगर कोई आपके लिए फ्री टाइम क्रिएट कर रहा है, देन वो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बिजी नहीं है। एंड इफ समवन इज डूइंग दैट, देन उनके प्यार को थोड़ी सी तवज्जो जरूर देना। क्योंकि यू नो व्हाट, आई हैव जस्ट रिसेंटली इनकाउंटर्ड सो मेनी रिलेशनशिप्स जिसमें सामने वाले के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो बिजी थे काम पर, फिर घर पर, फिर उसके बाद सोना था और किताबें पढ़नी थी, और मैं कहीं पीछे छूट गई। जब तक मैंने उन्हें ये याद दिलाया कि मैं इम्पोर्टेंट थी, तब तक मेरा दिल काफी देर पहले मुड़ चुका था। एंड व्हेन दे वांटेड मी बैक, आई जस्ट कुडंट कवर दैट डिस्टेंस टू कम बैक, यू नो। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि सामने वाले के पास मेरे लिए

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

अब बहनों भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत हमने सुना फिल्म शिखर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अंग्रेज बच्चों, 68 मतलब 68। इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन किंतु परंतु बट, ये गाना पहले लता जी को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से लिरिक्स थोड़े से डेरोगेटरी थे, यू नो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स, शंकर जयकिशन का ये कॉम्पोजिशन था। और उस साल गीत माला पर ये गीत पायदा नंबर 9 पर था। बड़ी हैरानी है मुझे, इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन नंबर 1 पे जो गाना था वो हम सुनेंगे राइट है शागिर्द फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

आप आए, बाहर आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मैं आपको भी बोल रही हूँ और जिस फिल्म का गाना हमने सुना उसका नाम भी बता रही हूँ। तो गाने में राजेंद्र कुमार जी, साधना जी उदास उदास होके ये गाना गा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन एज यूजुअल क्लीन शेवन नहीं है, हल्की हल्की स्टबल है उनपे। साधना जी सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए रो रही है, लेकिन उनका काजल लाइनर एकदम परफेक्ट है। हिमाचल की वादियों में ये गाना शूट हुआ था और हिमाचल से हम चलते हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, जहाँ पे अगला गाना शूट हुआ था, जहाँ शर्मिला जी ट्रेन में बैठी हैं, मस्त सा जूड़ा बना के उस पे फूल भी लगा है, किताब पढ़ रही हैं और साथ में जीप में राजेश खन्ना जी पहाड़ी टोपी पहनकर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं गाना गाते हुए। आराधना

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

कुछ चीजों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे उम्मीदें, सपने, वादे, खिलौने, चूड़ियाँ। चूड़ियों पर जरा एक शेर सुनिए, तनवीर गाजी साहब का है। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। एक ये शारिक कैफी साहब का सुनिए, कांच की चूड़ी लेकर मैं जब तक लौटा, उसके हाथों में सोने का कंगन था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जिसमें बड़े प्यार से चूड़ियाँ गिफ्ट की जा रही हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची 105.8।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: एक बार एक इंटरव्यू में राज कपूर साहब से मेरा नाम जोकर फिल्म के फेलियर के बारे में और उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: पंजाबी स्कंदन की माँ जीवेंदी सात कर्म न देंदी वंड, तो सात जनती तो है, वो सभी उसी को प्यारे हैं, वो कर्म नहीं बांट के देती, उनके अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना योग होता है। तो मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे जो कुछ बहुत ही चली हैं और कुछ नहीं चली। जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती हैं पीछे, तो जो निकल जाता है आगे वो तो खैर खुद ब खुद बहुत ही अहमियत पा लेता है, बहुत से सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते हैं। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है, तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर।
0: वाह साहब क्या बात है, इसी बात पे मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना सुनेंगे। शंकर जयकिशन जी का कंपोज किया हुआ, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, मुकेश जी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: क्यों मारा? क्यों मारा?
2: मेरी

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अब जो हम गाना सुनने वाले हैं वो एक विजुअल डिलाइट है, एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना जो पेरिस में शूट हुआ है। इसमें शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर जी हैं। शम्मी कपूर जी शर्मिला टैगोर को फॉलो कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं वो अपने एटीट्यूड में है। और पेरिस में बहुत अच्छे से शूट किया गया है गाना, जहाँ पे कभी ये रोड पे हैं गाड़ी में, फिर शर्मिला जी वो जो टूरिस्ट बस होती है डबल डेकर उसमें चढ़ जाती हैं, फिर वो पानी वाला स्टीमर होता है उसमें वो चढ़ जाती हैं। तो अलग अलग तरह से शहर को दिखाया गया है। और मैं जब भी इस तरह का कोई पुराना गाना देखती हूँ ना जिसमें दुनिया के किसी शहर को कैप्चर किया गया होता है, तो मुझे खुशी तो बहुत होती है और थोड़ा थोड़ा ऐसे गम भी होता है कि मैं जब भी पेरिस शहर को देखूंगी वो मुझे इस रूप में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके नए रूप में शायद कुछ और नई बातें होंगी, लेकिन मुझे तो पुरानी बातें देखनी है ना जो मुझे शायद इसी गाने में या किसी और जगह जब पेरिस को उस टाइम पे शूट किया गया होगा किसी वीडियो में, वहां देखने को मिलेगी। खैर, अभी यहाँ पर ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1970 की बहुत सारी फिल्में एक बहुत ही खास वजह से चली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और वो वजह थी राजेश खन्ना साहब की फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर। भाई 1969 में आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब तो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, सनसनी मच गई थी उनकी। तो उनकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए दूसरी कई फिल्मों में उनकी फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया गया था, तो काफी पब्लिक दूसरी फिल्में देखने गई थी ये ट्रेलर देखने के लिए। और आन मिलो सजना उन 17 कंसेक्यूटिव हिट्स में से थी जो राजेश खन्ना साहब की उस टाइम फिल्में हिट हुई थी। इसी बात पे इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है।

0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स विद चारू।

1978 की एक फिल्म है हीरा लाल पन्ना लाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही टाइम पास फालतू टाइप की फिल्म है, जो 70s की टिपिकल फिल्म नहीं होती थी फॉर्मूला वाली कि बचपन में बच्चों के माँ बाप को मार दिया जाता है, फिर वो किन हालातों में बड़े होते हैं, बड़े होके बदला बदला लेते हैं, वो सब। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में ना, जब क्रेडिट्स आते हैं, तब पुलिस फोर्स से माफी मांगी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बकायदा लिखा है उस अपॉलोजी में कि हमसे हमारी ओवर एंथुजियाज्म में ऐसा हो गया कि हमने पुलिस को गलत तरह से पोर्ट्रे कर दिया, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम किस तरह से पुलिस फोर्स को पोर्ट्रे किया गया है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कई बार मुझे लगता है कुछ पुरानी फिल्में अगर आज के टाइम में रिलीज होती ना, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में आती कि बैन हो जाती, ट्रोल हो जाती। खैर, अभी के लिए हीरा लाल पन्ना लाल में से लाल निकाल देते हैं। हीरा पन्ना फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on

एक बहुत पुराना 19वीं सदी का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक अमेरिकन सिविल वॉर सॉन्ग है, सिविल वॉर मतलब नॉट द मूवी, इट्स एन एक्चुअल वॉर सॉन्ग जो वॉर के बाद सोल्जर्स के घर आने की खुशी को दर्शाता है। ये एक अमेरिकन आयरिश म्यूजिशियन ने बनाया था गाना, जिसके बोल अंग्रेजी हैं, लेकिन ट्यून एक आयरिश फोक ट्यून है। थोड़ा सा सुनिए जरा।

अभी ऐसा सुनने में आता है कि इसी के म्यूजिक से इंस्पायर हुआ था वो गाना जो हम नेक्स्ट सुनने वाले हैं। अब वो हुआ था कि नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Purani Jeans, Charu ke saath. सिर्फ मिर्ची पर.
3: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे.

मुझे ना YouTube पे रैंडमली पुरानी फिल्में देखने का बड़ा ही शौक है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले मैंने जो फिल्म देखी वो है 1980 की स्वयंवर। एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म गुंडम्मा कथा का रीमेक है। इसमें मेन लीड में संजीव कुमार, शशि कपूर, विद्या सिन्हा, मौसमी चैटर्जी हैं। बाकी नादिरा, डॉक्टर श्री राम लागू, शशिकला, असरानी, रंजीत, मदनपुरी, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अडोरेबल इसमें मुझे लगे संजीव कुमार जी, मुझे एनीवे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सीन कुछ यूं होता है कि वो खुद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस बंदी से उनको शादी करनी है उसके घर में नौकर बन के रहते हैं। अच्छा, ये बंदी विद्या सिन्हा होती है और इसी बंदी की सिस्टर मौसमी चैटर्जी, ये थोड़ी नकचड़ी होती है। इनको सुधारने के लिए संजीव कुमार के जो भाई प्ले करते हैं शशि कपूर, वो इनके साथ कुछ ड्रामा करते हैं। फन एंटरटेनिंग फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। अभी इसका गाना सुनेंगे जो फिल्म में शशि कपूर एंड मौसमी चैटर्जी पे पिक्चराइज्ड है। राजेश रोशन की कॉम्पोजिशन, गुलजार साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1980 की शान फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट पता है क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी तो थे, लेकिन उनके साथ थे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। लेकिन इन दोनों को, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी को, रमेश सिप्पी साहब जिनकी ये फिल्म थी उनसे कुछ इश्यूज हो गए और दोनों ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह पे आए शशि कपूर एंड बिंदिया गोस्वामी। अच्छा, विनोद खन्ना साहब थे, लेकिन फिर उन्होंने सब मोह माया सांसारिक प्रेम छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाने का डिसीजन लिया और उनकी जगह पे आए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। एंड ये बिलीव करने में ना मुझे कई बार ऐसे मुश्किल आती है कि शाकाल के रोल के लिए संजीव कुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन सैडली तब उन्हें उनका फर्स्ट हार्ट अटैक आया और उस वजह से उन्होंने फिल्म नहीं की। तब उनकी जगह पर कुलभूषण खरबंदा साहब आए और शाकाल बनकर सब जगह छाए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

शाहरुख खान का घर मन्नत। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये घर शाहरुख खान ने 90s में यस बॉस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिस्कवर किया और 2001 में इसे खरीदा। लेकिन उससे पहले ये घर काफी टाइम रेंट पे अवेलेबल होता था फिल्मों की शूटिंग के लिए। ऐसा सुनने में आता है कि ये घर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में बना था। विला वियना इसका नाम था। पहले इसके पारसी ओनर्स थे, उसके बाद काफी ओनर्स रहे और इनमें से कुछ ओनर्स ने इसे रेंट पे दिया फिल्मों की शूटिंग के लिए। एंड वन ऑफ सच फिल्म्स वाज तेजाब। तेजाब फिल्म में जो माधुरी दीक्षित का घर दिखाया गया है वो यही तो घर है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मैं सोच रही थी जैसे कितने गाने हमारे लिए खास होते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के किसी याद से, किसी स्पेशल मोमेंट से जुड़े होते हैं, ऐसे फिल्म स्टार्स के लिए भी तो होते होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बल्कि उन्होंने तो उन गानों में काम किया होता है। वो गाना शूट करते वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, बाद में फिर जब वो गाना सुनते होंगे उनको वो मोमेंट्स याद आते होंगे। एक बहुत ही स्पेशल गाना है जो ऐसा सुनने में आता है कि शम्मी कपूर साहब के पास जब उनके लास्ट डेज में जो मोबाइल फोन था ना, उसकी रिंगटोन था। शंकर जयकिशन का कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग पगला कहीं का फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल झपठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हाँ।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या रिश्तों में एक बार पड़ी गांठ हमेशा के लिए दूरियां ले आती है या उसे दोबारा सुलझाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत गहरी फ्रेंडशिप्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, मियाँ बीवी का हो, कजन्स हो, बहुत सारे रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं कई सालों तक, और फिर कोई अचानक कोई बात आ जाती है जिससे अनबन हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, और कभी कभी उनमें सुलह हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जो रिलेशन पहले था वैसा वो नहीं हो पाता। और जगजीत सिंह की कमाल की गजल है, उसमें कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, वो क्रीज रह जाती है। ऐसा क्यों होता है?
4: सिर्फ क्रीज रह जाती है, वो आपके बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज पर जैसे एक हड्डी है, एक बार कहीं टूटती है, जुड़ जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या कहेगा, थोड़ा संभालना, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा
3: सेंसिटिव है,
4: वीक है। तो ऐसा रिश्ता कि जिसमें न कुछ हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। माना इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो, आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो,
3: बहुत कम होता है,
4: वो बहुत कम होता है,
3: आज तक तो नहीं देखा मैंने।
4: माना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर अब हम दूसरे लेवल पर जाते हैं कि अगर कुछ हो भी गया तो क्या उसको कोशिश करके हम उतना ही अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें भी आपको कई रिश्ते मिल जाएंगे जहाँ ये पॉसिबिलिटी है, जैसे पेरेंट चाइल्ड
3: शायद एकमात्र ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे बड़े आसानी से आदमी भूल जाता है, मूव ऑन कर जाता है।
4: एकमात्र आप कह रहे हैं, वैसे तो एकमात्र नहीं है, पर कम से कम अगर आप एकमात्र कहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी तो है।
3: पॉसिबिलिटी है कि
4: आपको भाई बहन ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने कितने बार आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा भी होता है, पर हमारा प्यार कम नहीं होता।
3: नहीं होता है ज्यादातर, प्रोबेबली पेरेंट चाइल्ड एकमात्र, क्योंकि वहाँ ईगो नहीं है, क्योंकि पेरेंट को भी है कि भाई मेरा बच्चा है।
4: तो फिर कारण तो आपने खुद ही बता दिया ना क्या है। कारण क्या है? ईगो है
3: जी।
4: वहाँ आप लेट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी ईगो नहीं है, तो आप कहते हैं कि अच्छा इनका तरीका भले ठीक नहीं था, पर मेरे मेरे मेरे पेरेंट हैं, इनको हक है, इनको मुझे डांटने का हक है, या जो भी कह रहे हैं शायद मेरे बेनिफिट के लिए या होगा, या समवेयर डीप डाउन आप हर्ट भी होंगे ना उनके तरीके से, तो भी आपको समवेयर पता होता है कि इससे बेटर मेरे लिए अच्छा
3: कोई सोच नहीं सकता।
4: वो चीज आप अंदर, पर ये आप अपने को याद दिलाते हैं, ये आप अपनी ईगो को हटा करके समझते हैं कि ये मेरे अपने हैं, मेरे अपना मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इनके दिल में मेरे लिए गुड विशेस हैं, एंड विच इज अ फैक्ट। आई थिंक जितने प्योर इंटेंट एक पेरेंट के होते हैं, एटलीस्ट 99%, चलो एक आध परसेंट कोई कारण हो सकता है, वो भी सर्कमस्टेंसेस कई बार उनको बिटर बना देते हैं,
3: वरना हमेशा तो भावना ही होती है।
4: हाँ, लेकिन कभी कभी जीवन के सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिसको आप फेस नहीं कर पाते
3: जी।
4: आप बिटर हो जाते हैं अपने आप से। माना कोई एक पेरेंट होता है, वो तो चाहता है मैं सबके लिए बेस्ट करूं, फिर कोई नौकरी छूट गई, आप अच्छा दे नहीं पाए, आप अपने से नाराज होते हैं
3: जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप जानते हैं, आपके अंदर जो होता है वही आप दुनिया को देते हैं। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पर कभी कभी हम ये नहीं समझते कि हम जो हैं वही हम अपने परिवार को देंगे। तो अगर हम नाराज हैं, अगर हम दर्द में हैं, अगर हम बिटर हैं, वही वाइब्रेशन किसी न किसी रूप से हमारे परिवार के पास जाएगा।
4: ऑरेंज है तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा, एप्पल जूस तो नहीं निकलेगा।
3: एब्सोल्युटली। और इसीलिए फिर आप परिवार को कितना भी कहते रहे, हमें आपसे बहुत प्यार है, आप ही हमारे सब कुछ है, पहुंचता नहीं है। क्योंकि पहुंचता तो वही है जो आपका वाइब्रेशन है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी रिश्ते में आपने गांठ की बात करी, हर बार गांठों को ना खोलने की कोशिश नहीं करें।
4: अच्छा,
3: उसमें ईगो टकराता है। गांठ को खोलने का मतलब क्या होता है, चलो बैठ करके बात करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपने रियलाइज किया होगा वो सॉल्व नहीं होता, कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है
4: क्योंकि शायद सामने वाला रेडी ना हो।
3: नहीं, दोनों अपनी जगह से राइट होते हैं, पर दोनों ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं राइट हूँ और आप रॉन्ग हो। पर कभी कभी गांठ को तोड़ के फेंक देना होता है। ठीक है, उस समय उनका मूड ठीक नहीं था, उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर मुझे पता है ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये 10 साल का फ्रेंड है, इसकी भावना मेरे प्रति अच्छी है। होगा उस समय मूड खराब, कुछ कह दिया होगा, आपने गांठ तोड़कर फेंक दी। अब अगर आप इसमें चले गए कि इतना अच्छा फ्रेंड था तो कैसे बोला, कोई और बोलता तो चलता, पर इसने बोला ना इसलिए मुझे इतना दुख हुआ,
4: ज्यादातर यही चलता दिमाग में, तब क्या करें?
3: तो वही तो हमने बात करी ना। एक है कि आप उस गांठ को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी सोच से, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत अच्छा दोस्त है।
4: लेकिन
3: हर व्यक्ति सी अच्छा दोस्त भी हर समय तो खुश नहीं हो सकता ना।
4: कभी कभी कुछ ऐसे मौके आए होंगे जहाँ वो भी परेशान होगा।
3: अब आप बहुत अच्छे दोस्त हैं पर मैं परेशान हूँ, तो न चाह करके भी मेरी परेशानी या मेरा दर्द ही आप तक पहुँचेगा। पर उस दिन आपका काम था उसको लेट गो करके मुझे ठीक कर देना, पर आपकी तो मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ही बहुत अच्छे से बात करूंगी और बहुत अच्छे से व्यवहार करूंगी। सो व्हेन यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आपको उसकी अच्छाई बुराई दोनों में साथ होना पड़ता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चाइल्ड हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, हमेशा वो परफेक्ट होंगे, हमेशा ही वो
4: हैप्पी नहीं, पॉसिबल भी नहीं,
3: है।
4: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिश्तों में लेट गो करना उन्हें और मजबूत कैसे बना सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने समवेयर इन रिलेशनशिप्स ना आपको थोड़ा थोड़ा लेट गो करना होता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो उस समय उसका मूड ठीक नहीं था, वो उस समय दर्द में था, और तो कोई कारण होता ही नहीं। और क्या कारण है? When I am not behaving well with you, हम कई बार ये बात कहते हैं कि दुखी व्यक्ति ही दुख दे सकता है।
4: बिल्कुल, hurt people.
3: मैं अंदर से खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे कुछ बोल भी देंगे ना, so I will just smile and say जाने दो ना, कोई बात नहीं, अभी ठीक नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: क्योंकि खुशी इमोशनल स्ट्रेंथ है। खुशी सिर्फ खुशी नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ जब मेरे पास होती है, पावर होती है, तो मैं कहता जाने दो। लेकिन जब मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, मैं अंदर से कमजोर हूँ, तो मैं आपकी बातों को पकड़ लूंगी, फिर उसको रिपीट करती जाऊंगी, फिर उस स्क्रैच का वुंड बनाऊंगी, फिर उस वुंड का आपको ब्लेम करूंगी, फिर हम वेट करते हैं कि वो आएंगे, वो सॉरी बोलेंगे, और कभी कभी वो सॉरी भी बोल देते हैं ना, पर हम अभी भी दर्द में है। तो हम उनको कहते हैं, नहीं नहीं, आप दिल से नहीं बोल रहे हो, आप फील करके नहीं बोल रहे हो,
4: पहले मन से बोलो,
3: ये आप सिर्फ ऐसा झूठा बोल रहे हो। और जिस दिन हम ठीक हो जाते हैं,
4: उस दिन सब सही होता है,
3: सब सही हो जाता है। हम कहते हैं, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आपने अपोलोजाइज किया, इट इज ओके, लेट गो। तो वो लेट गो किसी दूसरे की वजह से नहीं है, वो होल्डिंग ऑन और लेटिंग गो, इट्स माई, मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब परिवार वाले आपकी पर्सनल लाइफ में हद से ज्यादा दखल देने लगे तो बैलेंस कैसे बनाए रखें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो बहुत कमाल की, आई थिंक रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सारे घरों में होती होंगी, मुझे बता रही थी। शादीशुदा हैं, 4-5 साल हो गए शादी को, और उनपे बहुत ज्यादा जोर है उनकी सासू माँ से कि भैया बच्चा पैदा कर लो, और वो कह रहे हैं कि मैं वर्किंग हूँ, मुझे नहीं करना बच्चा, हमको जब करना होगा हम कर लेंगे। और जो हस्बैंड है वो किसी काम से, वो ज्यादातर 8-9 महीने शहर से बाहर रहते हैं। वो कहते हैं कि जब वो आते हैं 15 दिन के लिए आते हैं तो हम लोग मसरूफ हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में, एंड इट्स अ जॉइंट डिसीजन, जो भी कारण है अभी हमको बेबी नहीं करना। लेकिन मदर इन लॉ जो है वो बार बार उनसे एक ही बात करती रहती है, और वो जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई तुम बात कर लो। हस्बैंड से मदर इन लॉ बात कर नहीं रही है। हस्बैंड को जब वो बोलती है वो कहते हैं कि तुम इग्नोर करो ना, क्या फर्क पड़ता है। नाउ शी इज सेइंग मैं परेशान हो रही हूँ इस सवाल से, कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग से, जो रोजाना एक ही बात है और कोई इधर उधर की बात हो रही है, अंत में जाके इसी बात पे आके एंड होती है। तो वो मुझसे पूछ रही है कि क्या ऐसी बात है जहां मैं बिना अपना आपा खोए, बिना इरिटेट हुए सेम सवाल का रोज जवाब दूं लेकिन परेशान ना हूं।
4: जब सेम चीज रोज होती है और अगर आपको उसका आपा, जो आप कह रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं होना है, सी अगेन इट इज अ लॉट ऑफ इमोशनल पावर। बाहर से प्रॉब्लम है पर जो डिस्टर्बेंस है वो अंदर क्रिएट हो रही है। ये एक सिचुएशन है, कोई एक चीज इनको ये बात है, पर हर घर में आप ये कॉमन चीज देखेंगे, ये चीज मुझे रोज कहते हैं, इस चीज के लिए मुझे रोज टोकते हैं, इसका टॉन्ट मुझे रोज मारते हैं, मतलब देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग रेगुलरली कंटिन्यूअसली। तो वो जब बार बार होता है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाहर दिन में वो एक बार हो रहा होगा, पर आप अपने मन में दिन में उस बारे में 100 बार सोच रहे होंगे
3: जी।
4: क्योंकि वो रोज हो रहा है, वो ट्रिगर का काम करता है। आज उन्होंने एक ही बार कहा होगा, पर वो एक बार भी ट्रिगर काफी होता है। अब जो डिस्टर्बेंस है वो एक बारी की नहीं है, वो डिस्टर्बेंस है जो 100 बारी आपने सोचा या 1000 बारी आपने सोचा। और क्या सोचा? वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, समझते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है। दिस इज योर कॉन्वर्सेशन विच इज क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस मदर इन लॉ नहीं क्रिएट कर सकते। वो रोज आपको एक ही सवाल पूछ सकती है, वो रोज आपको टॉन्ट कर सकती है, वो रोज आपको इंसल्ट कर सकती है, पर वो आपके मन में घुस करके आपको इरिटेट नहीं कर सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशनल स्टेबिलिटी आपको हर कठिन सवाल का शांत जवाब देना कैसे सिखाती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप कहते हैं कि ये ज्यादातर तब होता है जब आप इमोशनली स्टेबल ना हो, लेकिन ये 4-5 साल से हो रहा है, तो 4-5 साल तक तो उन्होंने इसको हैंडल ही किया है, परेशान नहीं हुई, जवाब नहीं दिया,
4: तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए।
3: लेकिन उसके बाद अगर एक ही सवाल आपसे बार बार पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता ना, अरे नहीं देना जवाब भाई, आपको क्या परवाह है।
4: नहीं, इसमें सी पहले तो अगर सेम पेपर बार बार आता है ना, तो आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। बट सेकंड बात ये है कि इसको 5 साल तक कंटिन्यू नहीं करेगी, आपका जॉइंट डिसीजन है
3: जी।
4: मैं जो बात कर रही थी कि डिस्टर्ब होना ना होना वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप बिना डिस्टर्ब हुए बहुत स्टेबिलिटी से एक टफ कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ। आप उस बात को चलाएं नहीं, आप उस बात को इग्नोर नहीं करें, पर आप कुछ ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो। तो आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करके या जिसकी भी जो भी घर में समस्या है, आमने सामने बैठ करके एक टफ कॉन्वर्सेशन करें कि ये हमारा डिसीजन है, जब हमें करना है आप रोज ऐसा ना करें। आई हैव अ फीलिंग कि जब आप असर्टिवली कोई चीज कहते हैं, आप चला लेते हैं तो सामने वाले भी वो चीज करते जाते हैं। जब आप थोड़े से असर्टिव होते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, कहेगा पर उतना नहीं कहेगा। और फिर भी अगर आप, जो मुझे पता है आपका अगला सवाल होगा कि हम असर्टिव भी हो गए हैं लेकिन फिर भी वो करते हैं, कई बार हम कहते हैं, तो फिर वो उनका रोल है ना। हम किसी को तो नहीं बदल सकते हैं। अगर हम ट्राई भी कर लिया, हमने उनको कह भी दिया, थोड़ा बहुत चेंज आया, बहुत चेंज नहीं आया, तो हम में से किसी के अंदर भी, एक योगी के पास भी किसी दूसरे को बदलने की ताकत नहीं है। हमारे अंदर यही ताकत है कि दूसरे के संस्कारों से हम डिस्टर्ब नहीं हो, अपनी बात कहें और कह करके न्यारे हो जाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Positivity koi location thodi hai ki map pedala aur pahunch gaye. It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Tough conversations कई बार रिश्तों की healing कैसे बन जाती है? आइए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो मेरा अगला सवाल ये नहीं था कि असर्टिव होके भी बोल लिया, मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि असर्टिव होने के बाद अगर कॉन्वर्सेशन कर लें तो ज्यादातर सामने वाले से ये जवाब आता है कि अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते अपनों को, ये क्या बात हुई. तो आपको लगता है भाई मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे दिक्कत है इस बात से, हमारा डिसीजन है, आप उस बात का भी ताना देते हैं कि हम तो गैर हो गए, हम तो ये भी नहीं बोल सकते, हम तो बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, और आपको लगता है यार ये ड्रामा नहीं चाहिए मुझे.
4: नहीं, ये ड्रामा नहीं है ना, आप उनको भी तो समझे, ये उनकी भी तो एक आश है. देखो, हम पहले से ही कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही अगर नेगेटिव हो जाएं सामने वाले के बारे में, दैट इज व्हाई आई सेड द फर्स्ट स्टेप इज नॉट टू गेट डिस्टर्ब. जैसे एक आपकी जीवन जीने की इच्छा है कि हमें ऐसा रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, वी डोंट वांट अ चाइल्ड, वी डोंट वांट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक आपकी इच्छा है, आप अपनी लाइफ ऐसे देखते हैं. हो सकता है सामने वाले ने ऐसी लाइफ देखी हो कि मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा, बहुत इंतजार हो, बहुत खुशी हो, वो कोई आपके लिए गलत तो नहीं सोच रहे ना, वो सोच तो आपके लिए अच्छा रहे, पर आपकी सोच अलग है. आप जब उनको समझेंगे और उनको रिस्पेक्ट देंगे तो हो सकता है वो आपकी बात समझे, पर आप अपने मन में सोचे कि ये मुझे समझते नहीं है, ये मुझे ताना मारते हैं और ये ड्रामा करते हैं, अगर आप ऐसे ऐसा सोचेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे. तो हम अपनों के बारे में पहले इतना गलत क्यों सोचते हैं, ये लाइन भी कहना, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन लाइन, ड्रामा करते हैं, तो हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं उनको, तो वो ही थोड़ी ना तंग कर रहे हैं, हम भी तो उनके बारे में गलत सोच करके उनको तंग कर रहे हैं.
3: प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई लेकिन सिस्टर,
4: आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना कहते हैं ना, हम सोचते हैं सामने वाला बदल जाए तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, वो सोल्यूशन नहीं होता है. प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है कि सामने वाला नहीं भी बदला, पर हम उससे डिस्टर्ब नहीं हुए और हमने अपनी स्टेबिलिटी के साथ उनको अपनी बात कहने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी, बार बार रिस्पेक्टफुली अपनी बात कही. उसके बाद भी अगर वो नहीं बदलते और नहीं मानते तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो शुभ भावना है वो उनके लिए कम नहीं होती. दैट्स व्हेन आई हैव प्लेड माय पार्ट वेल, और एंड में मुझे मेरा ही चार्ट भगवान को दिखाना है, उनका नहीं दिखाना है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
6: EKG and phlebotomy,
5: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: It's 7:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: जिंदगी के स्टेज पर खुद की बेहतरी पर फोकस कैसे करें, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: हम सबको अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब देना है, हमें उनके कर्मों का नहीं देना है। तो अगर हम इतने एंटेंगल होते जाएंगे, जैसे आप थिएटर में हैं, आप वहाँ पर स्टेज पर जाते हैं, आप जिस समय स्टेज पर जाते हैं आपका सारा अटेंशन किस पर होता है?
5: खुद पर होता है।
4: मेन तो आपका खुद पर ही होगा ना। मेरे को अपना डायलॉग ठीक से बोलना है, अपना परफॉर्मेंस ठीक से देनी है। अगर वहाँ कोई डायलॉग भूल भी जाता है तो भी आप कोशिश करते हैं कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि किसी को पता नहीं चले, या प्रॉम्प्ट करें। पर आप वहां पर खड़े होकर के उनको याद नहीं दिलाना शुरू कर देते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने सारा ड्रामा खराब कर दिया, तो वो खराब ही हो जाएगा सारा। सी इवन इन लाइफ, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, इवन इन लाइफ माय एम एंड माय गोल इज टू प्ले माय पार्ट वेल एंड फ्रॉम माय पार्ट। इसलिए लीडरशिप के लिए हमेशा क्या कहते हैं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज टू लीड बाय एन एग्जांपल। क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जो बोल मैं बोलूंगा उसको सुनकर और करेंगे, ऐसा नहीं है। जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। इसलिए जो फेमस लीडर्स हैं, गांधी जी हैं, उन्होंने भी क्या किया, जो भी आपको औरों से कराना था वो पहले खुद किया। चाहे वो आपके खाने में चेंज है, रहने में चेंज है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। सो यू कैन ओनली प्ले योर पार्ट एंड देन यू इंस्पायर अदर पीपल।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
3: एब्सोल्युटली नॉट, उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
2: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
3: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
2: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है ना, लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
2: अच्छा।
3: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
2: अच्छा।
3: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnose nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
2: Achha.
3: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging. Agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
2: बहुत खूबसूरत।
3: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन,
2: वेरी नाइस।
3: आप उस समय पर हैं, एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
2: उसका
3: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर अभी फिलहाल तुम ऑफिस के ड्राइव पर हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, स्कूल ड्रॉप कर रहे हो, या फिर किचन में चल रहा है तुम्हारा महासंग्राम मेकिंग ब्रेकफास्ट वाला, वेलकम होम। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर कॉफी तुम्हें सिर्फ जगाती नहीं है बल्कि एक्साइटिंग भी बना देती है, और चाय सिर्फ अदरक वाली नहीं होती बल्कि मिर्ची वाली होती है, और तुम्हारा ब्रेकफास्ट सिर्फ क्रिस्पी नहीं होता है बल्कि एकदम धांसू होता है। वैसे देसी एक्सपैट लाइफ भी कमाल की है ना। इंडिया में मम्मी पूछती है कि बेटा खाना खाया, और यहाँ पर सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वेदर देखा आज का, अम्ब्रेला लिया, क्योंकि वेदर जो है यहाँ पर उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगले कुछ घंटों के लिए स्ट्रेस को बैक सीट पर रखो, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मस्त म्यूजिक, फिल्मी गॉसिप, फन कॉन्वर्सेशन एंड वो एनर्जी जो मंडे को भी फ्राइडे जैसा फील करा दे। हाँ हाँ, एम्बिशियस गोल्स हैं और बहुत सारे काम करने हैं तुम्हें, लेकिन मिर्ची पे इम्पॉसिबल भी प्लेलिस्ट में आ जाता है। आने वाले कुछ मिर्चीदार गाने तुम ऑफ एयर भी मुझसे दोस्ती बनाए रखो। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी योर मैसेजेस एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Edison, New Jersey. Conditions apply.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मुझे लगता है अगर हिस्ट्री के पास इंस्टाग्राम होता तो हर पोस्ट वायरल होती है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो अब टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1540 में। इंग्लैंड के किंग हेनरी VIII ने अपने चीफ मिनिस्टर थॉमस कॉमवेल को ट्रीजन के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। उस जमाने में HR मीटिंग्स बड़ी डेडली होती थी, नहीं? फिर आया 1821, जब जनरल होजे डे सान मार्टिन ने पेरू को स्पैनिश एम्पायर से आजादी दिलवाई। लेकिन 1914 में दुनिया का डायरेक्शन ही बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई World War I की। एक ऐसा डिसीजन जो हिस्ट्री का पूरा चैप्टर रीराइट कर गया। और फिर 1976 में चाइना के तांगशान में एक डेविस्टेटिंग 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। आज उन सबको याद करते हैं और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उन सिंपल चीजों के लिए जो रोज हम इग्नोर कर देते हैं। हिस्ट्री ना हमें सिर्फ डेट्स नहीं देती बल्कि एक पर्सपेक्टिव भी देती है कि हमसे पहले लोगों की जिंदगी कैसी थी। अगर तुमको भी हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स पता है तो मुझे DM कर सकते हो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Pyari brides, kya dhoondh rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
7: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
6: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Iselin.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: और इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही दिन में 6 मेडल्स जीतकर टोटल 10 मेडल्स कर लिए हैं अब तक, और मेडल टेबल में हम पहुंच गए हैं 8th पोजीशन पर। अब ये हुई ना कोई मॉर्निंग मोटिवेशन वाली बात। सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू शर्मिला धनकर, उन्होंने वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 में गोल्ड जीतकर हिस्ट्री बना दी है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की पहली पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई है। एब्सोल्यूट क्वीन एनर्जी। और हाई जंप में सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर्स क्लियर करके सिल्वर जीता है, और ये भी हिस्ट्री है कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हाई जंप में इंडिया का पहला एवर सिल्वर। वेट लिफ्टिंग भी फुल फॉर्म में है, ज्ञानेश्वरी यादव ने वुमेन्स 53 केजी में सिल्वर जीता है, और वलूरी अजय बाबू ने मेंस 79 केजीज में सिल्वर अपने नाम किया है। ओवरऑल टैली इज 2 गोल्ड जो की मीराबाई चानू एंड शर्मिला धनकर ने जीते हैं, एंड 5 सिल्वर जो ऋषिकांता सिंह, मुथु पांडे राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वलूरी अजय बाबू एंड सर्वेश कुशारे ने जीता है। और ब्रॉन्ज जीता है बिंदिया रानी देवी, शिल्पा शायला एंड जसप्रीत कौर ने। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, इंग्लैंड सेकंड पर है, और इंडिया का मोमेंटम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 903 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो आज घर से निकलने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फोन ले लिया, कीज ले ली, वॉलेट ले लिया, अम्ब्रेला लिया, वेदर चेक किया. वेदर चेक करवाने के लिए मैं बोले तो प्रिसला आज की उम्र थी मॉर्निंग्स पर. अब देखते हैं वेदर का हाल चाल क्या है. फिलहाल टेम्परेचर है 68 डिग्रीज फारेनहाइट और स्काई जो है वो पार्टली क्लाउडी ही है, लेकिन फील हो रहा है 70 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. देखो सुबह 6 से 8 तक तो स्काई इज मोस्टली क्लाउडी थे, लेकिन अगर तुम मॉर्निंग कम्यूट पे निकल चुके तो तुमने आराम से बादल आते हुए देख लिए होंगे. लेकिन असली ड्रामा जो है वो 2 बजे के बाद से शुरू होने वाला है, जब रेन एक्सपेक्टेड है. अगले 24 आवर्स में लगभग 32 मिलीमीटर्स की बारिश का फोरकास्ट है और पिछले 24 आवर्स में ऑलरेडी 14 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है. मतलब क्लाउड्स ने आज ओवरटाइम अप्रूव कर दिया है. आज का हाई रहने वाला है 82 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, लो जाएगा 68 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. कल से ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेम्परेचर रहने वाला है, बस थोड़ा सा कम वार्म रहेगा. विंड्स बहुत ही अग्रेसिव हैं, आज गस्ट्स आर अराउंड 11 किलोमीटर पर आवर और साथ में रोड्स भी वेट रहने वाले हैं, तो इसको लाइटली मत लेना. और एक इम्पोर्टेंट हेड्सअप है, फ्लड वॉच इज इन इफेक्ट. इसका मतलब फ्लड हो ही रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं. तो अगर आफ्टरनून या इवनिंग में ट्रैवल करने वाले हो, स्पेशली लो लाइंग एरियाज में, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बनता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. और हाँ, आज का वेदर जो है वो हेयर स्टाइल खराब करने वाला वेदर है, तो उस हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल बनाकर बाहर निकलना, साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि ढेर सारा पानी पीने से स्किन अच्छी होती है. एंड ऑफकोर्स लेयर के प्लेयर बनो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ. और अभी ऑफ एयर भी मिलते हैं एक्स और इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: एनर्जी मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और वक्त आ गया है मिर्ची आवर का 3 का, जहाँ पर तुम्हें मिलती है 3 अपडेट्स। सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी लेट नाइट सेल्फी वीडियो वॉज ब्रीफली रिमूव्ड इन इंडिया बाय फेसबुक। सेवरल एक्स यूजर्स क्वेश्चन फेसबुक पेरेंट मेटाज अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट पीएम मोदीज पोस्ट ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। नंबर टू पर मेटा लेटर सेड दैट द वीडियो हैड बीन रिमूव्ड इन एरर, अपोलोजाइज एंड रिस्टोर्ड द पोस्ट एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग इन टू वॉट हैपेंड। और फाइनली नंबर थ्री पर तुम्हारे वॉलेट का फ्यूचर थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो सकता है इंडिया में। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ ट्रायल फॉर ₹10 एंड ₹20 polymer plastic bank notes. Polymer notes last longer than paper notes, but don't worry, paper currency isn't going anywhere for now. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Sun rahe ho Mirchi Mornings, aur mujhse connect bhi kar sakte ho. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
3: प्यारी ब्राइड क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
7: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लो।
8: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7329972409।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: मिर्ची फ्रेश माल।
13: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। यू नो, फुटबॉल लेजेंड लायनेल मेसी ने अपने अर्जेंटीना टीममेट्स को वर्ल्ड कप के बाद एक सुपर थॉटफुल गिफ्ट दिया है। नहीं, कोई लग्जरी कार नहीं है और ना ही डायमंड चेन्स है। मेसी गिफ्टेड एवरीवन अ पर्सनलाइज्ड MATE किट। और अगर तुम सोच रहे हो कि MATE इज मेट लाइक अ फ्रेंड, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। MATE इज माचे, अर्जेंटीना का ट्रेडिशनल हर्बल ड्रिंक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम देसी लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक इमोशन है, एग्जैक्टली उसी तरह हर किट में था एक कस्टमाइज्ड ट्रैवल बैग प्लेयर के नाम के साथ, एंड साथ में है गोल्ड कलर्ड स्टैनली थर्मस, एक माचे कप एंड एक मेटल स्ट्रॉ और ऑफ कोर्स यरबा माचे, ताकि टीम की यादें सिर्फ मेडल्स तक ही सीमित ना रह जाए। देखा, कभी कभी सबसे बेस्ट गिफ्ट वो होता है जो कहता है कि हमने ये जर्नी साथ में जीती है। वैसे अगर तुम भी अपने ऑफिस टीम को गिफ्ट देने वाले होते तो शायद सबसे पहले कॉफी मग सेफ ऑप्शन होता है ना, वरना बजट भी रेड कार्ड दिखा देता तुमको। वैसे तुमको क्या लगता है, वॉट इज द बेस्ट गिफ्ट टू गिव टू यू? लेट मी नो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। इंस्टाग्राम और एक्स पर और व्हाट्सएप पर नंबर है मेरा 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो सबसे पहले अपने आप को एक टाइट हग दे दो, साथ में अपने आप को केक भी खिलाना बढ़िया वाला, और कैलोरीज को बोलना आज के दिन वेट करो। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। मैं दिल से विश करती हूँ कि तुमको इस साल तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियां मिले जितनी की फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह के मैसेजेस आ जाते हैं, और साथ में तुम्हें ढेर सारी प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ भी। अब चलो पता करते हैं आज तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे शेयर करते हैं। सबसे पहले साउथ इंडियन सिनेमा के दो एब्सोल्यूट हार्टथ्रॉब्स, धनुष एंड दुलकर सलमान। एक ने हमें व्हाई दिस कोलावेरी डी दिया है, और दूसरे ने हर लैंग्वेज में चार्म की मास्टर क्लास दी है। और बॉलीवुड की पावर हाउस परफॉर्मर हुमा कुरैशी का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे। अब हॉलीवुड की तरफ देखे तो जॉन डेविड वॉशिंगटन, एलिजाबेथ बर्कली, लोरी लॉकलिन एंड डस्टिन मिलिगन, और एक स्पेशल मेंशन जिम डेविस के लिए जो क्रिएटर हैं गारफील्ड के। तो अगर तुम्हारा मूड भी मंडे जैसा है ना, तो गारफील्ड ऑफिशियली अप्रूव करता है उसे। अब बर्थडे स्टार, एक प्रॉमिस करो कि आज थोड़ा सा कम स्ट्रेस लोगे, थोड़ा ज्यादा हंसोगे, और अपने लिए कुछ स्पेशल जरूर करोगे आज के दिन, बिकॉज टूडे इट्स ऑल अबाउट यू। और अगर बर्थडे विशेज में है मिर्चीदार गाने, तो वो भी प्ले करने वाली हो तुम्हारे लिए राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो सोशल पर भी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हाय देयर, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनने वाले हो गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,025, $4,025 पर ट्रायंस आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और राइट प्राइस एंड राइट टाइम का वेट करते हैं। अगर पिछले साल आज ही के दिन की बात को की जाए तो गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $3,300 पर ट्राउंस, लेकिन इस साल जनवरी के प्राइस की बात की जाए तो गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $5,300 पर ट्राउंस। 3,300 से $5,300 पर ट्राउंस गोल्ड के प्राइसेस इस साल के बिगनिंग में ट्रेड कर रहे थे। सो हमें लगता है गोल्ड करेक्शन के साथ आज करंटली $4,025 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स हो, 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम और किलो बार्स, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट राज ज्वेलर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट गोल्ड एंड सिल्वर बार्स के ऊपर ओवर $1,000 परचेज पर सेल टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं है इन द स्टेट ऑफ न्यूजर्सी। सो आइए गोल्ड में एंड सिल्वर में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। गो एंड फॉलो मी इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, 9033647244। अब मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची आवक का 3, जहाँ पे तुम्हें मिलती हैं 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट से जुड़ी सेलिब्रेशन वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. वीडियोस को लेकर ऑनलाइन मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि विक्ट्री शुड ऑल्सो हैव ह्यूमिलिटी, यानी कि जीत तो सेलिब्रेट जरूर करो लेकिन सेंसिटिविटी के साथ. प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपनी तरफ से सेलिब्रेशन को वॉलंटियर्स के अप्रिसिएशन का मोमेंट बताया है. नंबर 2 पर एक्टर एंड MP कंगना रनौत ने भी प्रोटेस्ट रील्स पे अपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शेयर किए हैं. सोशल मीडिया पर भी इस इशू को लेकर अलग अलग ओपिनियंस सामने आ रहे हैं. एंड फाइनली नंबर 3 पर क्रिकेट से इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपकमिंग टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है. कैप्टन है शुभमन गिल और सबसे एक्साइटिंग बात है कि 33 ईयर ओल्ड ऑलराउंडर सारांश जैन को मिला है उनका मेडन टेस्ट कॉल अप. सीरीज 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाली है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाते हैं मिर्ची, दे आर बैंगर्स फॉर यू. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: चलड़िया।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू राशि जोन। ये पहला पार्ट है जहाँ पर पहली छह राशियों की बात करने वाले हम, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज फ्रेंड्स और फैमिली की एडवाइस को इग्नोर मत करना यार। कभी कभी आई नो उससे बेटर होता है, टेल मी मोर। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज कोई शाइनी न्यू आइडिया बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा, बस एक्साइटमेंट में यस बोलने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, स्पेशली वर्क लाइफ में। लकी कलर फॉर यू इज मिंट कलर, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, रूल्स अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारे इनोवेटिव आइडियाज भी कम नहीं है। अगर दिल कह रहा है डिफरेंट सोचो तो रिस्पेक्टफुली अपना पाथ खुद चूज करो। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक नियॉन, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्यूचर के प्लान्स बनाओ लेकिन पेंसिल से, लाइफ कभी भी एडिट्स मांग सकती है, फ्लेक्सिबल रहना इज टुडेज सुपर पावर। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, जो कमिटमेंट किया है उससे शाइन कराओ, और हाँ अपने एटीट्यूड का सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो रिजल्ट भी प्रीमियम वर्जन वाले आएंगे। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज किसी की ड्रामा सीरीज में गेस्ट अपीयरेंस मत देना, डिस्टेंस इज पीस एंड पीस इज प्राइसलेस। लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 14। बस ये याद रखो, स्टार्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, डेस्टिनेशन तुम्हें खुद चूज करनी है। और अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में जब मैं लेकर आऊंगी राशि जोन पार्ट 2। तब तक कि तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
5: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहके काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लोर.
6: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7329972409.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं बाकी की बची हुई 6 राशियों का क्या हालचाल है, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
3: मिर्ची राशि जोन।
2: लीब्रा यानी कि तुला राशि, दिल अच्छा है लेकिन आज ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना जरूरी है। काइंड रहना अलग बात है, केयरलेस रहना अलग बात है, समझे। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कुछ चेंज करने का मन है, ग्रेट, बस इमोशनल इम्पल्स पे लाइफ का सेंड बटन मत दबाना, स्लीप ओवर इट फर्स्ट। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज तुम अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बस ईयर्स को ओपन रखना, कभी कभी बोनस विजडम फ्री में यहाँ वहां से सुनकर मिल जाता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 36। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, थ्रेट से बेटर कॉन्वर्सेशंस होती हैं। आज काम वर्ड्स ज्यादा पावरफुल रहेंगे देन लाउड रिएक्शंस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, अगर कोई थोड़ा सा डिस्टेंट लग रहा है तो उसे स्पेस दे दो ना यार, हर साइलेंस का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, हर कोई तुम्हें अबैंडन करने को नहीं निकला है, कभी कभी लाइफ बस बिजी होती है लोगों की। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, बजट बनाना स्मार्ट है लेकिन अपनी खुशी का बजट जीरो मत कर देना, इस वीकेंड अपने लिए एक छोटू सा ट्रीट अलाउ कर दो। लकी कलर फॉर यू इज सी ब्लू, लकी नंबर इज 19। बस इतना याद रखो, हॉरोस्कोप एक नज होता है, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी योर मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स अभी मिर्चीदार बैंगर्स मैं ड्रॉप करने वाली हूँ तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: तुमने एक बात नोटिस की है कि मॉर्निंग में चाय, कॉफी और मिर्ची मॉर्निंग्स एक टाइम पर आकर खत्म हो जाते हैं, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अब बस इसी नोट पर मेरा और तुम्हारा साथ यहीं पर खत्म होता है। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और जाने से पहले एक छोटा सा मनी मिनट। आजकल ना FCNR डिपॉजिट्स काफी डिस्कशन में है। FCNR बोले तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। और कुछ लोग इनके अगेंस्ट लोन लेकर एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न करने की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। सुनने में काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन हर शॉर्टकट जो है वो एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता है। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है, टैक्स रूल्स या रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, और अगर डिपॉजिट जल्दी तोड़ना पड़े या रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाए तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर कभी कभी कम्प्लीटली डिसअपीयर भी हो सकता है। इसीलिए फाइनेंस में भी वही रूल, रीड द फाइन प्रिंट बिफोर चेजिंग द हेडलाइन। वैसे भी देसी पेरेंट्स ने बचपन से एक ही लेसन दिया है, बेटा उधार सोच समझ के लेना चाहिए। और हम देसीज उसी एडवाइस पर अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फ्री लंच सिर्फ ऑफिस की पैंट्री में भी आजकल मुश्किल से ही मिलता है। तो तुम भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले अपनी सिचुएशन को समझो, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, और जरूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लेना, जो कि मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली। मुझे न्यूज पता चली तो मैंने तुम्हें कन्वे कर दी, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही कहीं पर पैसे डालना या निकालना। चलो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, तुम भी स्माइल के साथ साथ अपना बाकी का बचा हुआ दिन कंटिन्यू करो। काइंड रहो, हाइड्रेटेड रहो और मिर्चीदार रहो, एंड ऑफ कोर्स खाओ पियो ऐश करो, मुझे याद करो, और अगर याद करोगे तो मुझे फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। मिलती हूँ तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए चाओ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। दिखा लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए, और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरुदेव.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हो ना तो चौक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार. तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा, पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

One of the finest and most handsome villains, Danny. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, या डैनी डेंजोंगपा। इनका जन्म सिक्किम में हुआ था, स्कूली पढ़ाई नैनीताल में, कॉलेज की पढ़ाई दार्जिलिंग में, और फिर फिल्मी पढ़ाई FTII पुणे में। वैसे ये ना इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, इनफैक्ट उनका एडमिशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में भी हो गया था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने वहां से एडमिशन विड्रॉ कर लिया। फिर FTII में भी वो म्यूजिक सिंगिंग का कोर्स करने गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं मिला तो एक्टिंग में एडमिशन ले लिया। यहीं पर उनकी दोस्त बनी जया भादुरी जी, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि ये अपना नाम थोड़ा छोटा कर ले, क्योंकि उनका असली नाम सेरिंग फुनसोक डेंजोंगपा था। इनफैक्ट जया जी ने ही इनको ये डैनी नाम दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
6: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
5: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: 1979 की हॉरर फिल्म और कौन का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने ये गाना लिखा है, कंपोज्ड बाय बप्पी लहरी। एंड बप्पी दा ने ना इस गाने की कुछ ट्यून 1982 की फिल्म नमक हलाल के गाने में भी यूज की थी। मतलब इस गाने की जो स्टैंजास की ट्यून है ना, पैराग्राफ की, आपने सुने थे, एक बार वापस से सुनते हैं।
1: किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजरें के दिल खो गया।
0: समझ गए होंगे कौन से गाने में यूज हुआ है। नहीं, नमक हलाल का थोड़ी सी जो पीली है उसके स्टैंजास की ट्यून भी ऐसी है, सुनिए।
1: मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता।
0: और यहाँ जो हम सुनने वाले हैं वो है नमक हलाल का एक और आइकॉनिक सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
4: I am not going to bed with you ever again.
3: But why? What did I do?
4: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
3: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
4: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
3: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
4: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu.

0: 1981 की फिल्म नसीब का एक गाना है जिसमें सारे एक्टर्स विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, मतलब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, ये सब फैंसी ड्रेसेस में होते हैं और विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। अब इसकी शूटिंग की एक इंटरेस्टिंग बात एक इवेंट में ऋषि कपूर साहब ने शेयर की थी, सुनिए।
1: सो पूरे गाने में सब लगे हुए थे and here was Shatrughan Sinha not bothered sitting on the chair. Unki wajah se retake pe retake and he couldn't care less. Then Manmohan ji got an idea and ki aisa koi lamba aadmi ho jo dancer ho. He was called to actually do the double of Shatrughan Sinha and do that Cossack dance. Now hum sab lage hain apni taraf se zor laga rahe hain yaar, we got to do best in this that and yahan Shatrughan Sinha कैमरे के पीछे बैठ के इन हिज ओन इनिमिटेबल स्टाइल शाबाश करो डांस ये करो एंड ही हैज अ डबल डूइंग हिज बॉडी डांस एंड द ट्रेजेडी ऑफ दिस इज दैट व्हेन द सॉन्ग वाज कंप्लीटेड व्हेन वी सॉ ही टुक अवे ऑल द क्रेडिट आल्सो ऑफ द बॉडी सॉन्ग दे ऑल सेड के यार शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या डांस किया यार।
0: नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ध्यान रखें कि जहां मुश्किल स्टेप्स है वहां शत्रुघ्न सिन्हा साहब आराम फरमा रहे हैं और उनका बॉडी डबल नाच रहा है। फिलहाल ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: It's 1 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, Mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on

1964 की फिल्म मेरा साया का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर, कंपोज्ड बाय मदन मोहन एंड रिटन बाय राजा मेहदी अली खान। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म का नाम ना पहले सिर्फ साया होने वाला था, लेकिन फिर जब ये गाना बना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये मेरा साया जिस तरह से इस गाने में बोला गया है ना, वो इतना सुंदर साउंड कर रहा था कि इस फिल्म की टीम को लगा कि इस फिल्म का नाम मेरा साया होना चाहिए, तो नाम बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं जिसमें भी ऐसी ही कोई फीलिंग दी जा रही है कि आप जहां भी जाएंगे हमें ही पाएंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1981 की फिल्म कुदरत का ये सुंदर गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी बदसूरत से इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब की सुपरस्टारडम उस टाइम डिक्लाइन पे थी। वो काफी अपसेट इनसिक्योर रहते थे। ऐसा सुनने में आता है कि विनोद खन्ना साहब, वो भी इस फिल्म में, तब कुर्बानी के बाद काफी हिट हो गए थे, लेकिन उनका ऐसे हिट होना राजेश खन्ना साहब को थोड़ा रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कुदरत फिल्म के LP रिकॉर्ड से विनोद खन्ना साहब की फोटोज की प्रमोशन में वो हटवा दी कि भाई मेरी फिल्म है, मेरी फोटो लगेगी। अभी क्या पता यार, सुपरस्टार होना और फिर सुपरस्टारडम का डिक्लाइन होना कैसा फील होता होगा। फिलहाल यहाँ पे फुल फील वाला सुंदर गाना सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Sirf happy friendship day kehke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari aur non-stop open dance floor.
4: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Purani jeans with Charu, only on

मैं ना जितेंद्र जी को जब भी देखती हूँ मेरे मन के बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल जाता है, ओए मेरे गरम मसाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज जब मैं छोटी थी आई थिंक मैंने उनकी पहली फिल्म जो देखी थी वो थी कारवां। हमारे घर में वीडियो कैसेट थी एंड मुझे उनपे ऐसे छोटा सा थोड़ा सा क्रश भी हो गया था, इतने हैंडसम लग रहे हैं वो इस फिल्म में। तो इन द फिल्म वो और अरुणा ईरानी एक ही कारवां में होते हैं, मतलब वो जो शहर शहर जाके तमाशा दिखाता है कारवां उसका पार्ट होते हैं। और अरुणा ईरानी इनको लाइक करती है, फ्लर्ट करती रहती है और इनको प्यार से गरम मसाला बुलाती है, ओए मेरे गरम मसाले। वैसे आपको पता है इसी 1971 की कारवां फिल्म के बाद अरुणा ईरानी जी को एज एन एक्टर एज अ डांसर सीरियसली लिया जाने लगा था। उनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। और इसमें जो उनके डांसेस थे, फिर चाहे दिलबर दिल से प्यारे वो गाना हो या ये वाला गाना हो जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: It's 2:30 PM, Mirchi time check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
10: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholun.

0: अंत सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: वहीदा रहमान जी फिल्मों के सेट्स पे ना ज्यादा नहीं बोलती थी। पिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस वजह से कई बार डायरेक्टर्स के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती थी, बिकॉज ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था रोल को लेकर, सीन को लेकर। कितने ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बिना कहे उनकी बात समझ जाते थे या वो उनकी बात समझ जाती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कम, बहुत कम। ज्यादातर डायरेक्टर्स ये कहते थे, भाई बात नहीं बनी, इसको और थोड़ा कुछ कीजिए। तो मैं पूछा करती थी, कुछ का क्या मतलब? ये जो कैरेक्टर है बहुत हार्श है, नहीं समझदार है, यानी प्रिटेंशियस है, नहीं क्या है? नहीं, ये सीन जैसा भी है कि उसको जरा आप ऊंचा करके कीजिए। मैंने कहा ऊंचा से मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा लाउड होना चाहिए। और मेरा बेसिक नेचर और मेरा कैरेक्टर प्ले करने का रवैया ज्यादातर यू नो अंडर प्ले करना, स्ट्रेन्ड एक्टिंग, तो उसमें जरा मुश्किल हुआ करती थी। एक गुरदत्त जी थे, फिर एक अशित सेन, और विजय आनंद से मेरी काफी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहुत कम लोग मुझे मिले जो यू नो कि वो जो कह रहे मैं समझ जाऊं, जो मैं कहना चाहती थी मेरे से यू नो अग्री करते।
0: वैसे देवानंद साहब के साथ भी इनकी बहुत जमती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की सुपर डुपर हिट फिल्म तेरे मेरे बीच में का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रति अग्निहोत्री जी की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसमें हीरोइन के काम के लिए ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक थी पद्मिनी कोल्हापुरी भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका हम गाना सुनेंगे अभी, जमाने को दिखाना है। और क्या गाना है, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1977 की एक फिल्म है यही है जिंदगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें मेन लीड में है संजीव कुमार साहब और ये एनफ होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। तो ओवरऑल फिल्म इतनी बढ़िया नहीं है, कुछ एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग इतनी ठीक नहीं है, लेकिन संजीव कुमार का काम पैसा वसूल है। उसमें वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता है, उसको अपनी काबिलियत, इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत पे भरोसा है। वो गरीब है और उसको लगता है उसकी लाइफ में अगर पैसा आ गया तो वो मेहनत से और पैसे बढ़ा लेगा और खुश हो जाएगा, पर उसकी लाइफ में पैसे आने से पहले साक्षात भगवान आ जाते हैं, श्री कृष्ण उससे मिलने आते हैं। फिर इनकी लाइफ में कुछ पैसे आते हैं, ये मेहनत करके बहुत रईस हो जाते हैं, लेकिन क्या उनको वो खुशी मिलती है जो उनको लगता है कि पैसे आने के बाद मिलनी थी? दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, यही है जिंदगी। फिलहाल गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसमें परफॉर्मेंस के लिए संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, आंधी फिल्म। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

आपको पता है सुभाष कई साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ पूनम सिन्हा के राखी ब्रदर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और 1970 से हैं, तो जब 1976 की फिल्म काली चरण की शूटिंग हो रही थी उस टाइम सुभाष कई एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में थे। वो सिचुएशन ये थी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब उनकी वाइफ जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको भी डेट कर रहे थे पूनम जी को, और रीना रॉय जी को भी डेट कर रहे थे जी। तो ये चीज सुभाष घई के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी बिकॉज फिल्म के सेट पे वो रीना रॉय के साथ रहते थे। बताइए बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे क्या क्या कहानियां होती हैं, पता भी नहीं होता। फिलहाल इसी फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Basis, Krishna Jewelers, Ladies First Choice.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इतना काम करते हैं कि आपका काम ही आपकी दुनिया बन गया है, बाहर आपकी कोई दुनिया ही नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपके कलीग्स ही आपके दोस्त बन गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वही आपका परिवार है शायद, क्योंकि परिवार वालों से ज्यादा तो अपने कलीग्स से मिलते हैं। एक इंटरव्यू में सुनिए माला सिन्हा जी ने क्या शेयर किया था कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री के बाहर वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाई।
1: हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है एक के बाद पिक्चर आती जाती है, आप काम करते जाते हो तो माहौल वही होता है। हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट, वही हमारे परिवार होते हैं। हमने एंजॉय बहुत किया, बहुत आई लाइक। हालांकि मैंने और चीजें बहुत मिस किया, मतलब सैक्रिफाइस त्यागना पड़ा, जैसे बाहरी दुनिया के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने परिवार। भाई मेरे अपने कजिन सिस्टर से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था मुझे, वही तो मेरे परिवार।
0: चलिए इसी बात पे माला सिन्हा जी पे पिक्चराइज्ड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose, weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

0: की टाइम।
1: दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
0: Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
3: भैया किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है?
3: भैया नंबर चेक करके
2: मिला। नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल।
2: पागल। पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है इको।
3: हेलो।
2: हेलो।
3: हेलो।
2: हेलो। जेंट्स आने पर यहाँ को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
3: भैया
2: नंबर चेक कर मिला।
3: हेलो।
2: हेलो।
3: भैया क्यों परेशान कर रहा है
2: किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
3: पागल
2: कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि।
4: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes. Comes the naan, the same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest-running culture, values, and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
14: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया?
13: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
15: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
13: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਭਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ।
16: ਰਾਂਝੇ ਦਿੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
13: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
9: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
9: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारी सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि तो शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलाम इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाम इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलाम इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Listener mein, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shanda. Let's do not
1: donkey have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब जमाना आता था ना कि जब

कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामे इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलामे इश्क टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पे अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपने रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, डीएम मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनु लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
8: Sham Shanda, let's do Nautanki, have a funky time.
9: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था. और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलाम इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कम्पोजिशन इस एल्बम के लिए थे. और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो. तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी. वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की. मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड. और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट. तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग, और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की. वैसे यार ये गाना इतना ज्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम. तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूं मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी. लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है. टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो या पहली दिवाली विद फैमिली के हो या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेन्स वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70-year लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nechi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burka, burka. La vieja la burka.
2: Nechi, burka.
3: Day, day, day, day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: Hello.
5: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
5: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
5: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
5: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
5: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
5: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
4: तो
5: जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
5: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है. सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
5: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
5: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
5: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
5: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
4: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब कुकड़ू को.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
12: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
13: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
14: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
13: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
15: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: शमशादा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ में ना अक्सर जो चीजें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होती है वही कभी कभार सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है। फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन, यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है। और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है लेकिन सवाल भी हजार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: Good evening, Mitchell. This is your friend Beesh from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work, expecting rain in our area. And today the markets are mixed. No changes in the mortgage rates. Lately, you must have watching the housing market. You know, it feels like a total roller coaster between changing interest rates, shifting inventory and endless news headlines. It's easy to feel overwhelmed whether you are looking to buy your first-time home or upgrade to a bigger space. The biggest mistake I see buyers make today, shopping for homes before getting pre-approved. Get pre-approved isn't just about knowing your maximum budget. It shows sellers you are a serious buyer in this competitive market. A strong pre-approval letter can literally be the difference between getting your offer accepted or losing out to someone. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.375%. 20-year fixed mortgage rate, 6.25%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit a user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Another key point, mortgages aren't one size fits all. A lot of buyers think you need to put at least 20% down payment, but that's a myth. There are incredible options out there, from low down payment, conventional programs, to zero down options. So friends, buying your dream home, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage. Oh, no!

0: It's 5:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक यू नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलामे इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी

ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो। ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुंदर और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
2: Bol raha hu, mat kaun?
3: Atul ji. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी।
2: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
3: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
2: ठीक है, काम में
3: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
2: अच्छा,
3: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
2: मेरे चैम्बर में आइए, तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे।
3: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ, मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है, हमेशा
2: धोखे देती है।
3: मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार, वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
2: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
3: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, बेवकूफ
2: बेवकूफ नहीं
4: सर, बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, अपने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
3: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
4: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पकड़। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Listener MA, back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ, और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shanda, let's do not
1: donkey, have a funky time. संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Sirf happy friendship day kahe ke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyotsana and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shayari or non-stop open dance floor.
5: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफर जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाट आर मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La Virpa, la Burga.
2: Mirchi, Burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: हाँ जी कौन?
3: हाँ जी कौन?
4: हेलो, किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
4: अभी किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
4: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
4: पागल
3: पागल
4: कौन बोल रहा?
3: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
5: इको आ रहा है, इको।
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा
4: हूँ।
3: नंबर चेक के मिला।
4: हेलो
3: हेलो
4: भैया,
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
4: रवि,
5: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
4: कुकड़ू को
5: भाई को बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई।
5: अब आप खत्म कर दो यार।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
13: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
12: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
16: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है सीधा DDLJ से। जी हाँ, वही आइकॉनिक क्लाइमैक्स सीन जहां राज सिमरन के पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हाथ पकड़ने का मोमेंट और बैकग्राउंड में हिस्ट्री बन चुकी है। वैसे तो यार स्क्रीन पे लगता है कि सब परफेक्टली प्लान था, पर पर्दे के पीछे सीन थोड़ा रिस्की था। जी हाँ, ये सीन किसी ग्रीन स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक रियल चलती ट्रेन पर शूट हुआ था। और SRK एक्चुअली मूविंग ट्रेन के फुटबोर्ड पर लिटरली लटके हुए थे। कोई फैंसी सेफ्टी हार्नेस नहीं था, कोई CGI नहीं, सिर्फ बैलेंस, ट्रस्ट और आदित्य चोपड़ा का कॉन्फिडेंस। एक गलती और राज स्विट्जरलैंड नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म पर होते। वैसे क्रू का पल्स थोड़ा हाई था, लेकिन डायरेक्टर का फोकस टाइट था और कैमरा बोल रहा था कि ये शॉट मिलेगा ना तो पिक्चर हिट है बॉस। तो जी हाँ, आज भी एक टेक, एक मोमेंट और बॉलीवुड को मिल गया था वो आइकॉनिक शॉट जिसे आज तक का हमारा सबसे बड़ा रोमांटिक एंडिंग बोला जाता है। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में रोमांस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं बट कभी कभी थोड़े रियल रिस्क से भी बनता है। और ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो मुझे जरूर बताना। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए DDLJ का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Oh, no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पर फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मजा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊंगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पता है, I realized a very important thing in life, और ये मुझे बहुत साल लगे to figure out कि जब आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो आपको सब कुछ आउटसोर्स करना पड़ता है. खाना आपसे बनता नहीं, काम आपसे होता नहीं, दिमाग आपका चलता नहीं है, तो आपको मम्मी को कहना पड़ता है कि भाई कॉफी बना के रख देना, क्योंकि कॉफी बनाने का भी दिमाग नहीं चल रहा है. आपको जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने दोस्तों से पूछने पड़ते हैं कि यार ये जो बंदा है, ही इज टेलिंग मी दैट हमें एक वेकेशन कर लेनी चाहिए. इज इट टू सून टू गो आउट ऑन अ वेकेशन? आपका दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि यू आर इन लव, और जब आप प्यार में हो तो आपके बाकी दोस्तों को आपके लिए दिल का, दिमाग का, पेट का काम करना पड़ता है. बेसिकली आई हैव रियलाइज कि जब मिर्जा गालिब ने कहा था, आई थिंक कि इश्क ने गालिब निकम्मा, ऑब्वियसली मिर्जा गालिब नहीं कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, नहीं तो आदमी तो हम भी थे काम के. और मैं जिंदगी में इतनी बार निकम्मी बनी हूं कि ये मेरा प्रोफेशन बन गया है. अब मैं एक निकम्मी आशिक / आरजे हु गिव्स एडवाइस अबाउट लव हूँ. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको प्यार हो गया है और अब आप किसी लायक रहे ही नहीं हो. कहाँ आप घर के चश्मों चिराग सबसे लायक इंसान थे और अब कहाँ जमीन पे पड़े नालायक आशिक हो. अगर है ऐसी बात, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स. मेरा